0: संत को बन सक्षर दिया है शिव ने श्राप तुम्हारी छय निश्चय संविधान पढ़ी आफ्नो सुझाव दिनु बेस छ गोर्खाल्याण्ड र कश्मीर के भन्दै छन् जवाफ छ छिमेकी घरमा आगो सल्काई मख छौ भने सोही आग बुझी भस्म बनाएगा स्वयं तुम्हे तिमी अंग्रेजको दास हामी स्वाधीन भइरह्यौ पानी पिएर धरतीमा बमसँग भिडिरह्यौ गोर्खाली वीरता देखी विश्व कामदछ थरथर है कि नहीं तुम्हे यारो थोड़ा भी मृत्यु का भय गोर्खाली वीरता देखी विश्व कामदछ थरथर है कि नहीं तुम्हे यारो थोड़ा भी मृत्यु का भय
1: धन्यवाद।
2: आजको कविता
3: आजको कविता।

0: झुक होइन झुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अधिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

ए खेती बाली गरी बस्दैन जमी पाखा ए मैले बेच्छु बासमती मैले खान्छु मिठी खानी मन त थियो मर्म बुझी कोले ए चार साला भो शिरमती।